0: रेडियो ITN
1: होल ड्राइव विक्रेता
0: लकाना इवनिंग ड्राइव
2: समसंध्या वक्त है बहाई विनाडी का ही विलाव है